0: असंख कहे सिर भार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा
1: लिखन बोलन बान अखरा सर संजोग बखान
0: जिने लिखे तिसर नाहे जे फरमाए ते पाहे
1: किता तेता नाउ वरनावे नाही को थाओ
0: कुदरत कवड़ कहा विचार वारिया ना जावा एक वार
1: भाव साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार
0: पर यह हाथ पैर तन देहे पानी तो तय उतरस खेहे
1: कपड़ हो दे साबुन लिया हो तोहे
0: पर यह मत पापा के संग ओ तो पहना वह कह रंग
1: पापी आखुन नाई कर करना

0: ना ही कोए बैन गुण कीते भगत ना होए।
1: स्वास्थ बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ।
0: सुवेला वक्त कवन कवन थत कवन वार।
1: कवन सिरुति महा कवन जित हुआ आकार।
0: पाई पंडित जे हो।

0: जम है पूत है अशूत है,
1: शोक कर्म परम
0: अजीत है पीत है बाह है अगाह है,
1: निदान नीक फ्रीक है
0: जंग पयात शब्द,
1: नमो शर्मा निस्वास्थ्य निदाने नमो देव देवे पिखिय पीवे,
0: नमो काले काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे,
1: नाथ नृसंगी प्रमाथ नो पान पाने नो मान माने,
0: नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने,
1: नो नाद नादे नो पान पाने नो बाद बादे,
0: अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रपंगी परमाथे समस्ती बभूते,
1: बने कलांकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वर परम रूपे,
0: नमो जोग जुगे स्वरंग परम सिद्धे नमो राज रुजे स्वरंग परम वृद्धे,
1: शास्त्र वाणी नो मास्त्र वाणी नो परम ज्ञाता नो लोक माता,
0: अभिखिया परमी अभोगी अभुगते नमो जोग जुगे स्वरंग परम।

0: मन मान नो रोग रोगिन मास्तम शनाने
1: नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंतर जंतरंग नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र
0: तंत्रंग वरणासीनु पिरूपे सुमस्तल निवासी
1: सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता अदो उर्धर धंग गंग ओग हर्ता
0: परम परम परम यशंग ब्रज पालंग सदा सर्वदा सदाता दयालंग
1: अच्छेदीय पेदीय नामंग कामंग समस्तो पराजी समस्ता मंग तेरा जोर चाचरी शांत
0: पीता पे
1: प्रभु है अजू है देश है अपेश है पुचंग पयात शंद
0: आदे वादे नंदी स्वरूपे नो सर्वमान्य समस्त निदाने
1: नमस्तंग निर्नाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग गंजे नमस्तवंग पंजे
0: नमस्तवंग काल नमस्तवंग पाल नो सर्वदेशे नो सर्वपेशे
1: नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महामाहे
0: नमो गीते नमो प्रीति प्रीते नमो रोख रोके नमो शोक शोके
1: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग
0: नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग
1: नमो सर्व दृसंग नमो सर्व कृसंग नमो सर्व रंगे तरभंगी अनंगे
0: जीव जीवंग नमो बीज बीजे खजे भिजे समस्तंग प्रसजे
1: कृपालंग स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सदा सर्वधार सदंग निवासी चरपट संत व प्रसाद
0: गर्मी अमृत में खल जोगे चल भोगे
1: अचल राजे अटल साजे अखल धर्म
0: सर्वंग
1: भुगता सर्वंग जुगता
0: सर्वंग देवंग सर्वंग भेवंग सर्वंग

0: देवनाद मूरत थाप्यो सबे जय थाप
1: रूपुणी मूर्त पूर्ण पुर कपार
0: सर्व विश्व रचयो स्वयंभव गण पंजन हार
1: कला संजोगत काल पुर का देश
0: धर्म सुपरम रहत भूते लख पेस
1: राग न रंग जग जात पात न नाम
0: गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम
1: आप रूप मीकानो स्तुति पुरख अवधूत
0: गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत
1: भंग नाथ मेक पुरख पार
0: सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत पार
1: सर्वांता सर्व तेन पेख
0: सर्व शास्त्र न जान जह रूप रंग अर रेख
1: पुराण जाके नित भगत नित
0: कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवे बहु चित मद पार शांत व प्रसाद।

0: भंगा भाव भंगत मत पार गुण गण उदार
1: गुण पर नाम निर्भय निकाम अद्भुत प्रचंड मित गत खंड
0: अलिश्य कर्म दृश्य धर्म सर्वापर नंडन बाड
1: चाचरी संत व प्रसाद
0: बिंदे मकंदे उदार अपारी
1: हरियां करियां ने नामे अकामे पुचंग पयात छंद
0: चक्र करता जत चक्र हरता जत चक्र दान जत चक्र जाने
1: चंदर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले
0: चक्र पास जत चक्र वास जत चक्र माने अत्र चक्र दाने
1: चाचरी छंद
0: न सत्र न मित्र न भर्म न पितर
1: न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये
0: न चतर न मित्र परि है पवित्र
1: परदिशय अदिशय अदृशय अकृशय भगवती संत व प्रसाद कथते
0: आशीष दिशा के आप जो पिसा के आंगन कर्म के आप पंच परम
1: के आप जो लोक के आदित्य सोक के अवधूत वर्ण के वह भूत करने
0: राजन ब्रह्मा की तरम तो जाए के आसुक वर्ण के सर्वा परने
1: के जगतं कृति है के शत्रंग क्षत्रि है के ब्रह्म स्वरूप है के अनुभव अनुप
0: देव के आप भी चतन विहीन के

0: रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है
1: के सर्वतर माने के सर्वतर दाने के सर्वतर गौणे के सर्वतर पौणे
0: के सर्वतर देश है के सर्वतर भेष है के सर्वतर राज है के सर्वतर साज है
1: सर्वतर दीन है के सर्वतर लीन है के सर्वतर जाहु के सर्वतर पाहु
0: के सर्वतर देश है के सर्वतर भेष है के सर्वतर काल है के सर्वतर पाल है
1: के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर भीखी के सर्वतर भीखी
0: के सर्वतर काज है के सर्वतर राज है के सर्वतर सुख है के सर्वतर भोख है
1: के सर्वतर त्राण है के सर्वतर प्राण है के सर्वतर देश है के सर्वतर भेष
0: है के सर्वतर मानी है सदैव अंग प्रधानी है के सर्वतर जापी है के सर्वतर थापी है
1: के सर्वतर भान है के सर्वतर मान है के सर्वतर इंद्र है के सर्वतर चंद्र
0: है के सर्वंग कली में के फर्वंग फही में के आकल आला में के साहेब कला में
1: तमामल रुजु है मैं सुसला मैं सलिखत मदाम मैं
0: गरीब शिकस्त है गरीब परस्त है बिलंदुल मकाने जमीन अल जमाने
1: तमाम रुजु अल निदान हरिफल जिमर जाय फिज कीन
0: है अनेक उल तरंग है भेद है भंग है अजीज उल निवास है गली मुल खराज है
1: निरोग स्वरूपा तर मुक्त भूत है पर भक्त प्रभा है सुजग सुदा है
0: सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्व साज है
1: सुसलाम है सदैव काम स्वरूप गाद अनूप
0: गाद रूपे अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे
1: त्रिवर्ग त्रिवाद्य गंजे गादे सुभंग सर्भाग्य सर्व अनुरागी
0: त्रिभुक्त स्वरूप है चिज है अछूत है के नरकंग प्रणास है पृथ्वी प्रवास है
1: प्रभा सदा भंग सदा भक्त स्वरूप पर जगत अनूप
0: है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद
1: नंग भीख लिख
0: अपर्म है कर्म है अनाद है जुगाद है
1: बह भूत तूत है
0: अनास है उदास है दंद है अबंध है
1: भक्त है विरक्त है नाश है प्रकाश है
0: चित्त है स्नित है अलिख है अदिख है
1: पीख है पीख है टह है गह
0: है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है
1: सुनत है जात है जाद है
0: चरपट शांत व प्रसाद
1: सर्वंगता सर्वंगता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता
0: सर्वंग हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणी सर्वं
1: सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता
0: सावल शांत व प्रसाद
1: नरक नाशे सदा प्रकाश्य नंगं स्वरूपे भंगं भूते
0: परमात्मं परमार्थे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्वाध भूते
1: ये नामे त्रिपंगी त्रिकाम निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे
0: ना पोत्र है ना पुत्र है ना सत्र है ना मित्र है ना तात है ना मात है ना जात है ना पात है
1: सात्म श्री का मित्तो मी कसद एवं प्रभा जय अजा है
0: भगवती शांत व प्रसाद
1: हजूर है के हाजर हजूर है मेरे सुसलाम है समस्त कलाम है
0: के साहिब दिमाग है के हुसनल चराग है के कामल करीम है के राज करीम
1: है के राज करहिंद करीम उल कमाल है कुसनल जमाल है
0: गरीम उल खिराज है गरीब उल निवाज है हरीफ उल शिकन है हिरास उल फिकन है
1: वर्णास समस्त निवास है अंजल गनीम रजाय करीम है
0: समस्त उल जुबा है के साहिब किरा है के नरकंग प्रणास है बेस्त उल निवास है
1: भगवान ने सर्वान तमाम तुम ही जय समस्त अजीज है
0: परम परम ईश है समस्त अधीश है देशोल लेख है हमें सोलह पेख है
1: जमीन और जमा हमें कोल हिमाय करी मुल्क माल है की जरूरत जमाल है
0: के अजलंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो बबूत है
1: मितो बस है के आत्म प्रभा के चलंग नंग के मितो अभंग है
0: मधुपार शांत व प्रसाद
1: मन प्रणाम गुण गण मुदाम हर पर गांज हर नर पर भंज
0: अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर खंड बर नर अमंड
1: नाश मन मन प्रगा गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम
0: अंग अस्तने भंग उपमा पार गत मितो धार
1: जल थल मन दस विस भंड जल थल मन दस विस बेअंत
0: अनुभवा नास त्रेता तो रास आजान बाहो एक है सदा हो
1: ओंकार आद कथनी नाद खाल खंड ख्याल गुर बर काल
0: कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनचिज गात आज जना बात
1: टुट भंडार ठट पार
0: आदित धर्म अर्थित कर्म अनबन अनंत दाता महंत हर मूल मना शांत व प्रसाद
1: पुरनाल है हर काल है कल खंडन है मह मंडन है
0: जगदेश्वर है परमेश्वर है कल करण है सर्व बारण है
1: तरण है जाके करण है मन मान्य है जग जान है
0: सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है
1: संग पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है
0: ब्रह्मंडस है कल खंडस है परते पर है करुणा कर है
1: जपा जाप तापाय थपा तापाय कृता कृता अमृता अमृत है
0: अमृता अमृत है करना कृत है कृता कृत है धरनी धृत है
1: अंतेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत है अमृता अमृत है
0: अजपा कृत है अमृता अमृत है निर्नायक है कलकायक है
1: संपर है करुणालय है निरपनायक है सर्पायक है
0: पापंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है
1: सर्वा कृत है कर्ता कर है अर्तार है
0: परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस की जस है पुचंग पयात चंद
1: सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे
0: नमो अंधकार नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे
1: शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे
0: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
1: जुदे नमो ज्ञान ज्ञानी नमो भोज भोजे नमो पान पाने
0: नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग प्रभुते
1: रूपे लंकर लंके नमो आशास नमो बंक बंके
0: अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक श्री छंद अपू अनास अकाश
1: पांज लाख पाकु
0: अकाल दयाल लेख पेख
1: काम गाह
0: अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी
1: नाराग्य निरंगिन रूपिन रेखे
0: अकर्मंगा परमंगा गंजे अलेखे पुचंग पयात छंद
1: मस्तल प्रणामे समस्तल प्रणाश्य मंजल नामे समस्तल निवासी
0: निर्कामंग बैपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणाशी सो धर्मंग बैपूते
1: सदा सचदा नस्तंग प्रणाशी करिमुल कुनिंदा समस्तल निवासी

0: कब्यो बाच बेंती चौपाए हमरी करो आते रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा
1: सब चन्नन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रित पारा
0: हमरे दुष्ट सभी तुम काब हो आपा दे मोहि बचाव हो
1: सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा

0: सिख हमारे, तारी है चुन चुन सतर हमारे मारी है।
1: आप हाथ ने मुझे भरी है, मरण काल का त्रासन भरी है।
0: जो सदा हमारे पछा सिरिया, तो जो करे हो रच

0: राजा हवे बैठा कहूं सिमर प्यो संकरे केठा
1: सगरी सिद्ध दिखाए अचंभव आद जगाद स्वरूप स्वयंभव
0: अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगरो
1: दुष्ट ते हट पटे अत पाता सकल मलेश करो रण काता
0: जे अस्तुज तब सरणी पर तिनके दुष्ट दुख हवे मरे
1: मूर्ख जबन पग परे तिहारे तिनके

0: कहे नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत ना पाया।
1: गुर नार मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया।
0: पाया अमृत गुर कृपा किन्नी, सच्चा मन वसाया।
1: जी जंत सब तुझ पाए, इक वेख परसन आया।
0: लाभ लोभ अहंकार चुका, सतगुरु भला पाया।
1: कहे नानक जिसनु आप तुठा, तन अमृत गुर ते पाया।
0: भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता केरी, विखम मार्ग चलना।

0: सदा रहो हर रंग जप हो सारग पाणी
1: कहे नानक सदा गाव हो एह सच्ची बाणी
0: सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाचो होर कच्ची बाणी
1: कहिंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख बखाणी
0: हर हर नित करे रसना कहया कछु न जानी
1: चित जिन का हिर लिया माया बोलन पैर वाणी
0: कहे नानक सतगुरु बाचो होर कच्ची बाणी

प्रभु का सिमरन सप्ते उच्चा, प्रभु के सिमरन उदरे मूचा, प्रभु के सिमरन तृष्णा बूझ, प्रभु के सिमरन सबके सूझ, प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहे समाए, प्रभु जी बसै साध की रसना, नानक जन का दास दसना, प्रभु को सिमरे से तनवंते, प्रभु को सिमरे से पतवंते, प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरे से बेमोताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा विनाशी, सिमरन ते लागे जिने आप दे अल्ला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभु को सिमरे से परि उपकारी, प्रभु को सिमरे तन सदबलिहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तन सुख बिहावै, प्रभु को सिमरत ने आत्म जीता, प्रभु को सिमरत निर्मल रीता, प्रभु को सिमरत ने अनंत कनेरे, प्रभु को सिमरै बसे अर नेरे, संत कृपा ते अंदन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग, प्रभु के सिमरन कार्य पूरे, प्रभु के सिमरन कभू ना चूरे, प्रभु के सिमरन हर गुण बानी, प्रभु के सिमरन सह समानी, प्रभु के सिमरन निश्चल आसन, प्रभु के सिमरन कमल विघासन, प्रभु कै सिमरन आनंद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पा।

उपाय अरसिमरन पैसिद जति दाते अरसिमरन नी चौंकुंट जाते। हर सिमरन तारी सब धरना सिमर सिमर कारण करना हर सिमरन कियो सगले कारा हर सिमरन में आप निरंकारा कर कृपा जसा बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक। दीन दर दुख भंजना कटकट

पत जाए अष्टपदी। दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्त कारण बेखोट गवावे एक बीना दे दस बीहर ले तो मूड़ा को कहाँ करे जिस ठाकुर सुन आई चारा था को की जस सद नमस्कार जाका मन लागा प्रमीठा सर्व सुखता बन उठा। जिस जने अपना हुक्म बनाया सर्व सुख नानक तिन पाया आगन सा अपनी देरास कात बीत बरते अंधुलास अपनी मानक शबौर साले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बौर उसका विश्वास ना होवे। जिसकी बस्त सागर आख्या प्रभु की आज्ञा मन है मत है उसते चौगुण करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनुपात्मा है के हेत सत प्रभु जान अनहित बिरकी साया सो रंग लावे ओ बिन सेव मन पछतावै। जो दिसै सो चालन हार लपटरे हो तैं अंधार बटाऊ सो जो लावै नेह ताकवत ना आवै के ही मन अरखे नाम की प्री से उदाई कर कृपा नानक आप ले आई। मिथ्या तन धन कुटुंब सुभाया मिथ्या मैं ममता माया मिथ्या राजो बन तन महाल मिथ्या काम क्रोध बिगराल मिथ्या रथ हस्ती असवे वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया भेख हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आप सुप्रकृत गुमान अस्त्र पल साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण। मिथ्या सरवण पर निंदा सुनै मिथ्या स्पर्दर को रह मिथ्या नेत्र भेड़ पर त्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजन स्वाद मिथ्या चरण पर बेकार को धावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब भय सफल दे नानक हर हर नाम लय बिरथी सख्त की हर जा सच बिना के हो बस सूचा बिरथा नाम बिना तनयांद मुखावता कै दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय मेघ बिना जो खेती जाए गोबिंद भेज बिन बिरथे सब काम जो कृपण के निरार्थ दाम धन धम ते जन जे कट बस्यो नहाओ नानक धाकै बल बल जाओ। रात अवर किशावर कमावत मन नहीं प्रीत मुख गंड लावत जन हर प्रभु प्रवीण बार भेट न काऊ भीन अवर उपदेश आप न करे आवत जावत जन मैं मरे जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीर करे संसार जन तू भान तिन प्रभ जाता नानक कुंजन चरण पराता।

नानक प्रभु शरणागती कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकुर को रखम ने माहे जे प्रसाद सुगंध तन लावै तिसको सिमर परम गत पावै जे प्रसाद बसै सुख मंदिर तैसे आए सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्याग कतावर लुभावै जे प्रसाद सुख से सुजै मन आठ पैर तक जस गा बीजै जे प्रसाद सबको मन है मुक्ता को जस रसन मकान है जे प्रसाद तिरो रहता धर्म मन सदा त्याई केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जब तर गए मन पावै नानक पास सिती कर जावै जे प्रसाद आरो कंचन देही लिवलावो तुस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावो हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सकल सदर ठाके पान सरनी प्रभ ठाकुर प्रभ ताके जे प्रसाद तुझको न पूछे मन साथ साथ सिमरो प्रभु चे जे प्रसाद पाए दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद आपूखन पहरे जे मत सिमरत मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजै जे प्रसाद आसास्ता सुहारी मन तिस प्रभ को कबू ना बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तनारा कोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बणत बनाई उठत बैठ सत सत आई ते सत जो एक अलख आई हूं नानक तेरी रखा जे प्रसाद करे पुन बोधान मन अड़ पर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद उचार बिहारी तिस प्रभ को सास सास सितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर सदा नूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रह गुरु प्रसाद नानक जस कै जे प्रसाद सुने करना जे प्रसाद पे कह बसमा जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसमा जे प्रसाद अस कर चला जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परमगत पावै जे प्रसाद सुख सह समावै सब प्रभु त्याग और कत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद उपर गड़ संसार तुस प्रभु को मूल न मनो बिसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मनु उठता को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तस जन मन सदा हजूरे जे प्रसाद उपा मैं साच रे मन मेरे तुता से रात जे प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपे जब सोए आप जे पाए जपे सो ना हूं आप गवाए सोहर गुण गाऊं प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु प्रभ दया ते मन उत्तम होए सर्व जान प्रभु तेरी मैं आपो कछु नक नहीं लाए अज जित लाभ होत तित लगे अरनाथ नानक किन कह कछु ना हाल सलोक अगमगाद पार ब्रह्म सोए जो जो कह सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता सा जिना की चर्च कथा अष्टपदि साधक संग मुख जिलो सा संग मल सली को साधक संग मटे अभिमान साधक संग प्रगटे सो ज्ञान साधक संग बुझे प्रभ ने हीरा साध संग सब उतन मेरा साधक संग पाए नाम रत्न साधक संग एक ऊपर जतन साधक की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साधक शोभा ब्रह्म है समानी साधक संग गोचर मिले साधक संग सदा प्रभु लय साधक संग आवे बस पंचा सा संग अमृत रस पंचा सा संग सब किरण साधक संग मनोहर बहन साधक संग कर तू धावे साध संग सुख मन पावे साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक कब सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सा मीर साधु कै संग मा अपनी साध संग किस्य नहीं बैर सतक संग ना बीगा पैर सतक संग नहीं को मंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग नहीं हो ताप हो सतक संग तरे सब आप आपे जाने सत बढ़ाई नानक सत प्रभु बने आई सतक संग सब ना कदम साध के संग ना कब हूं तावै साधक संग सदा सुख पावै साध संग बस तक गोचर लहै साधु के संग अजर सह साधक संग बसे तन ऊचे साधु के संग मैल ऊचे साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग के बल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु के कुर्बान साधक संग सब कुल उधार है साध संग साध जिमित कुटम निस्तार है साधु के संग शुद्ध पावे जिस तान ते सब को बरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग सो बसुदेवा साधु के संग पलायन साधक संग अमृत गुण गा

चिंतो ब्रह्म ज्ञानी के अंदर मन तो ब्रह्म ज्ञानी करे प्रभाप ब्रह्म ज्ञानी के बट प्रताप ब्रह्म ज्ञानी के दर्श बट भागी पाई ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाय ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर नानक।

वेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथना जाय अधाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व कठाकर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बकाना ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जान ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सजीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जोगता जीव का दाता ब्रह्म ज्ञानी।

बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपद जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पातियो सोवान जो जाने मैं जो बणवंत सो अतविस्ता का जन आपस को करवंत कहावे जन मरे भोजन प्रमावे धन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्खंधा के आन हर कृपा जिसके हृदय गरीब विसावे नानकिया मुक्ता के सुख पावे धन मंता कर करवावे तृण समान को संग न जावे बोलस करमाण पर करे आस फल पीतरता का विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हुए जय बसमन किसे न बदे आप ओंकारी तन मराते करे खुआरी गुरु प्रसाद जा का मिटे अवमान सो जन नानक दरगे प्रवान कोट कर्म करे उतारे शरम पावे सगले बिरथारे अणक तपस्या करे अंकार नरक स्वरूप कर फुरे अवतार अणक जतन करे आप तुम द्रवे हर दल के गु कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाए निपुण आवे सर्व गिरिंजा का मन होए कहो नानक ता की निर्मल सोए जब लग जाने मुझ ते का सोए तब सुख सुनाई कोय जावे जाने मैं कुछ करता तब लग गर्व जुन मैं फिरता जब तारे को मैरी मीत तब लग ने चलना ही चीत जब लग मोह मन संभाए तब लग धर्म का देश जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु बरसा नानक हो छूटे सहस कटे लाख कुड़तावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अणक भोग किया के करे न तृप्तावे खप का मरे बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मनोर दृत सवकाजे नाम रंग सर्व सुख बढ़वागी किसे प्राप्त होए करण करावण आपे आप सदा सदा नानक हर जा करण करावण करण हार इसके हाथ काम विचार जैसे दृष्ट कर सावे आपे आप प्रभु सोए जो कुछ किन सपने रंग सब दे दूर सबू कै संग बुझे देखे करे विवेक आपे कापे नेक मरण बिन से आव न जाए नानक सदी रह समाए आप विदेश

मानव की टैगृति सब जान देव नु कह के भगवान जिसके दिए रहे गाय बहुन दिसन लागे आए मारे राखे को आप मानव के बिना यह तिसका हुक्म सुख होय तिसका नाम प्रकंठ पुरोय सिमर सिमर सिमर बस होय नानक गुण लागे कोय औसत मन में कर निंकार कर्मण मेरे सदव्यवहार निर्मल असन अमृत भी उसना सुहेला कर ले जीव नैनो बेठाकुल कारांग सासंग बिन से सब संग चरण चलो मार गोविंद मिठे पाप जपी हर बिन कर हर कर्म सर हर कथा दर गिनान कुजल मथा बड़भागी दे जन जग माय सदा सारा के गुण गाय राम नाम जो कर विचार से तन वंदन गुणी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जन ते सुखी एको एक एक पछाने तुखी सो जी जान नाम संग जिसका मन माने नानक ने निरंजन जाने गुरु प्रसाद अपने आप सूझे तिसकी जानो तिसना पूजे सा संग हर हर जस कह सर रोग ते हर जन रह आन दिन कीर्तन को खियान किस्त मैं सोय निर्वाण एको प्रति जन की आसा तिसकी कटिए जम की फासा पार ब्रह्म की स्मरण भूख नानक तिस न लागे दोख जिसको आप मन चित आव सो संसोय लै नहीं डुलावे जिस ब्रह्म अपना कृपा करे सो सेखो किस्ते डरे जैसा सता सद सबने कर तुम्हें आप समाये सोदत सोदत सोद सिजिया गुरु प्रसाद तब सब बुझिया जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सोय सो न किसन में न किस मरे अपन चलते आवी करे आम जाम दृष्ट दृष्ट आगे कारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सकल में आप ही अंग चुप रही था उठा बनासी नाई किस खंड धारण तार हो ब्रह्मांड अलख पे पुरवरता पे आप जपाय नानक जाप जिन भर जाता सो सो भवंत सगल संसार उदरत निमंत प्रभु के सेव सौ उदाहरण प्रभु के सेव दो सार आप ही मेरे लय कृपाल गुरु का सब जप निहाल कोई सेवा सोई लागे जिन कृपा करे उड़ भागे नाम जब बा विश्राम नानक तिन पुर को तो कौतम कर मान जो खुश करे सो प्रभु के रंग सदा सदा से अर संग सह समाये हुए सोए करण हार पछाने सोए प्रभु का किए जन मीर लगाना जैसा सा तैसा दिष्टान जिस तब जैसे समाये समाये सुख निधान गुणाए आपस को आप दिनो मान नानक प्रभु जने को जान सलोक सर्व कला भरपूर भविता जान नहार जाके सिमरन उतरी है नानक तिस बलहार अष्टपद टूटी कंडन हर गोपाल सर्व जिया पे प्रताप सगल चिंता सुनवाए तिस्ते बिरथा कोई ना रे मन मेरे सदार जाप अवनासी प्रभ आपे आप अपन किया कुछ नोए जिस प्राणी लोचे कोय जिस बिन ना इतरे कुछ काम गत नाम जापे करनाम रूपां तो ना ही मोहे प्रभु की जो सर्व कट सो है धन मंता क्या को गर्भे जन सब कोई तिसका दिया दरबे असुरा जे को कहावे प्रभु की कला बिना कहता है जी को होए बह दातार तिस दिन हर जाने गवार जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सुजन सदा रोग जो मंदिर को थामे थमण तो गुर का शब्द मणे थमण जो पाखाना चढ़ तरे प्राणी गुर संलक्त निस्तरे जो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन दीप मन हो विकास जो माम ध्यान में मार्ग पावे जो साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन के बांचो तूर नानी की अलोचा पूर मान मूर कह बिलाए पुरुल के का लिखिया पाई है दुख सुख प्रभु देव हारे अवर त्याग तू तिसार जो खुश करे सोई सुखमान भुला गए फिर जान कौन वास्ते इधर संग लपट रस लोय बताऊंग राम नाम जब हृदय माए नानक पासे थी कर जाए जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज मान ले मन मोल राम नाम हृदय में तो

ब्राह्मण पर की ठाकुर के सेवक निर्मरी ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रभु पालन हर सेवक की रख निकार सो सेवक जिसे प्रभु तारे नानक सो सेवक सा सा समारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक के सर पर रख अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक किया पद रखे ता की कदम कोई न लाख प्रभु के सेवक को कोना पहुंचे प्रभु के सेवक उचे उचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दा दिस प्रगटाए निकी कीरी मैं कर रखे भसम करे लश्कर को लाखे जिसका शासन कटते आवता को रख देख रहा मन जतन कर बात इसके करतव बिरथे जात मारण राखे अवरण को सब जिया का राखा सोय काहे सोच करे रे प्राणी जब नान कर वड़ पिडानी बारंबार भर पवज पिए पी अमृत मन तंत्र पिए नाम रतंजन गुरमुख पाया तिसके शब ने दृष्टाया नाम तन नाम रूप रंग नाम सुकर नाम का संग नाम रह जो तंत्र उदाने मन तन नाम में नाम सम्मान ने उठ बैठ सोत नाम कहु नाम जन के सदगा बोलो जह जे बादन रात प्रभु अपने जन की नींदाद करे भगत आत्म के जाए प्रभु ने सूरह समाए जो हो आहो असो जाने प्रभु अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह न जाने आठ पर प्रभु से हजूरे कौ नाम से जिन पूरे मन मेरे तिन की ओर ले मन तन अपना तिन जाते जिन जन अपना प्रभु पुछाता सो जन सर्व थोका दाता जिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्श पाव मिटावे और से अनु सगल विचार तिस जन की जो सेवा लागे आवन जान हो तेरा नानक तिस जन की पूजो सत पैर सलोक सतपुरख जिन जाने सतगुरु तिसका नाम तिसका संग सिख उदर नानक हर गुण गाओ अस्ब सतगुरु सिखी करे प्रताप से को कुछ सदा दे सिखी गुरु दुरमत माले रे गुरु बचनी हर नाम चरे सतगुरु सिखे बंधन काटे गुरु का सिख विकार ते अटे सतगुरु सिखो नाम तन दे गुरु का सिख उड़बागी है सतगुरु सिख अल पल सुवारे नानक सतगुरु सिखो जी नाल सुमारे गुरु के ग्रह से उजोरे गुरु की आगे मन में सह आपस को कर कछु नावे हर हर नाम दे साते आवे मन बेचे सतगुरु के पास सेवक के कार्य रास सेवा कर तो है नेकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा से आप करे नानक सो सेवक गुरु की मत ले बीस विश्व गुरु का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गा जाने सो सतगुरु जिसरी दे हर नावन कुबार गुरु को बल जा सरणधान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार मेखे अपने कश परम है सह सैन बलैण जाइए नानक ऐसा गुरु फाकी पाए सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण कत निर्मरीत भेटत संग्राम गुण रवे पार मुंकी दड़के कवे सुनकर बतन करने अखाने मत संतोख आत्म भतयान पूरा गुरु रखे जाका मंत्र अमरदिष्ट पेके संत गुण बेंद कीमत नहीं पाए नानक जिस भाव तिहले मिलाए जिस भाए कुस्ता तन एक सतपुरु पूर्ण विवेक आहू बोल न पाचत प्राणे कम गोचर बण रिबाणी निरहार निर्वैर सुखदाय ताकि कीमत किन न पाए भगत बंधन करे चरण कम हृदय सिमरै सतबलहारी सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने हर स्वभाव जन को अमृत पीवी अमृत सो होए उस पुरु का नायक दे विनाश जाके मन पगटे घुमतास आठ पैर हर कण ले सच उदय सो को दे मुँह माया के संग न ले मन में राखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक रमो दुख तय ते नासे तब तुम्हारे ठंड बरताई अणद भया दुख नाठे भाई जन्म मरण के मटे देसे साधु के पूर्ण उपदेसे हो चुका निर्भोय बस सर्व व्याध मन देखे न से जिसका साधन कृपा धारी साध संग जब ना मुरारी तित पाए चुके भ्रम गावन सुन नानक हर हर जस सर्व निर्गुण आप सरगुण पियो कला धार जन सगले मोय अपने जर प्रवे आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जा नाई को सर्व निरंतर एको सोय पोत पोत्र विहार उपरंग भय प्रकाश साध के संग रच रचना पिंगल धारी अनकवार नानक बलहारी सलोक साथ न चाले बिन भजन विखिया सगली सार हर हर नाम कमावना के तंसार अष्टपति संत न मिल करो विचार एक सिमरनाम धार रूपा समित विचार चरण कमृत मरतार कारण कारण सुप्रभ सम्राथ दृढ़ कर गहो नाम हर बाते तन संचो भगवंत संत न कर निर्मल मन
एक आसरा कुमन माए सर्व रोग नानक बिन जाए जिस तन को चार कुंड उड़तावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बाचे मीत सो सुख साधु संग करी जिस सोभा को करे फली करणी सा सो वज हर की शरणी अणगो भाई रोग न जाए रोग उड़े हर कदलाए सर्व धन मैं हर नाम धान जब नान कर गई प्रवान मन प्रभु द्वार के नाए दादी तावत आवे ठाए ताको बिघन लागे को जा कर दिवस हर सोए कलता ती ठंडा हर नाओ समर समर सदा सुख पाओ भवन से पूर्ण व्यास भगत अपाए आत्म प्रकाश तिद कर जाए बसे अवनासी को नानक काटी जम फांसी तत् विचार कह जन साचा जन मर सो काचो काचा आवागण मटे प्रभ से व्याप त्यागण गुरुदेव मृतन जन्म का हो उदार हर हर सिमर प्राण धार अनुगो भाव न छूटन हारे सिमर सा सदवे विचारे हर की भक्त गुरु मन लाए मन बंशित नान खुलवाए संगना चालस तेरे धना तू क्या लपटावे मूर्ख मन सुत मित कुंवर बंता इंते को कम सनात राज नंगमय विस्तार इंते को कौन छुटकारा सरस्ती रथ सुवारी झूठा डम छूट पासारी जिन दिए तिस बुजन बिगाना नाम सार नान को स्थाना गुर की मातुले आने भगत न बोडू बे सियाने हर की भगत गुरु मन मीत निर्मल होय तुम्हारो चीत चरण कुमरा खून माए जन्म जन्म की गलो खजाए आप जपो प्रणाम जपाओ सुनत कह त्रैत कर पाओ सार पुत हर गुण आओ सस वाय नान गुण गाओ गुण गाओ त्रिउत्र समैल बिन जाय मैं भी फैल हो चंद बस सुखनाल सास ग्रह सरनाम संभाल छाड़ सियाणु सगली मना सास संभावे साई जाना हर पुंजी संत करो बिहारियां सुख दुर्गे जयकार सर्म निरंतर को दया कह नानक जा के मस्तगले के को जा पे को साला एक सिमर कुमणिया एक इसके गुण कारण अंत मंतन जाप एक भगवान ते को एक करा पूर्ण पूर्व प्रव्या अंग विस्तार एक ते एक रात बरा सद गए मंतन अंतरिक पुरो रात अगुर प्रसाद

0: る。
1: साहब जी सुख होटल गुरु सिविया अहनसा सवाए दर्शन परसया गुरु के जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहे गुरु साहब जी राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं नाही अनल अगम जैसे लहर मैं औदद जल केवल जल माही जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं नाही अनल अगम जस लहर मैं उदद जल केवल जल माही माधवे क्या की ब्रह्म ऐसा जैसा मानिए हुए न तैसा रहा नरपते एक सिंहासन सोया सुपने भया भिखारी अछत राज बिछरत दुख पाया सोगत पई हमारी राज प्यंग प्रसंग जैसे है अब कश मरम जनाए अनक कटक जैसे

अर्जुन देव जी, बंदा कहिंदा कोई गल नहीं लंगर ही खाना आ, लंगर ही खाना आ, जिदा लाइन च बह के खा, लाइन च खड़े होके खा लो, प्लास्टिक च खा लो, खड़े होके उन्होंने कहा ओए चौके को तो खड़े हो, खड़े होके लंगर खा लो, कोई गल नहीं लंगर ही। जात है कि मर्यादा सिस्टम गुरु साहब ने बनाया, बाणी आ पर एक आ सिस्टम आ। जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब चैप्टर आ, चैप्टर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी आ, जिन्होंने पता चैप्टर आ बेस्ड ऑन मेन चैप्टर जे बेस्ड ऑन पाँच बड़े पता राग, ठीक है जी, पोएट्री के हिसाब न राग जो म्यूजिक आ बेस किया गया। हम इमेजिन स्टिल ओल गुरु ग्रंथ साहब जी और सारी बाणी आल गुरबाणी, पर आई डिसाइड टू चेंज द ऑर्डर। मैं कहता कहो भी पहला गुरु नानक देव जी शब्द कर लेंगे, जस्ट चेंज द ऑर्डर, सारा गुरु ग्रंथ साहब सेम आ, फिर गुरु अंगद देव जी की बाणी, फिर गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास, गुरु अर्जन की भगत बाणी, अंसौने का, सो सेम ओल बाणी, सारी बाणी सेम आ, पर मैं ऑर्डर चेंज कर दिता। तो लगता मैं वो गुरु ग्रंथ साहब इतने लिया के मैं कहूँ खालसा क्लब प्रकाश कर दौ जी रखन द गुरद्वारा वड अलाउ मी, मैं कह फुल पाठ गुरु तो ही आ, बाणी पूरी आ, पर रीजन की आ बड़ी सिंपल, ए मर्यादा नहीं, इट्स नॉट द गुरुज वे, सिंपल आ, बाणी हैगी आ, ये दोनों बाणी आ, दोनों असं मत्था टेकोगे, दोनों असं रिस्पैक्ट करोगे, पर वन इज द गुरुज वे, गुरु की मर्यादा, दूजा हैगा बंदे की मर्यादा, बंदे ने चेंज किया, यह हैगा जो मॉडर्न इन कहते हैं पदछेद, सैपरेट वर्ड्स किए हैं, हम ए भी डिफरेंस हो सकते हैं। सो ये सेम चीज आ, द वी कैन डू द गुरुज वे और माई वे, एक बच्चे गुरु साहब की खुशी भी होर मिलेगी। मैंने एक बेनती कर दिया, मेरा फर्ज है दसना, मैं तो कई बार मैं कह चुका पर मैं बोली जाना, किन्ना वधिया तुसी जे गुरुद्वारे नहीं चेंज कर सकते, घट तो घट तुसी इन्ना कह दो खालसा क्लब ही लड़ीवार स्वरूप प्रकाश करोगे, घट तो घट इन्ना कि बना लो, असी जरा घट तो घट असी गुरु ग्रंथ साहब जी जे विल हैव द, जिदा गुरु अर्जन देव जी मर्यादा दे महाराज सानू बाणी दिती उदा असी प्रकाश कर लोंगे, हौली हौली हौली हौली बाकी गुरुद्वारे कैचअप कर लोंगे, देख के सोना असी जो असी अपना अपना प्रोग्राम करोगे, समथिंग टू थिंक अबाउट। ये भाई साहब तुहाडी मर्जी आ, तुसी की करना किदा नहीं करना आ, हुण ओह गल आ गई आ जो टेबल चेहरा पहला हैगियां, असीं हुण खालसा क्लब वेरे टेबल चेहरा तुहाडे ते है नहीं, मैं कोई गुरद टेबल चेहर जा खालसा क्लब चलदे चलदे टेबल चेहरा खोलो खिच के तुसी बाहर लिया गया, मैं तो नहीं, मैं कहा तुहानूं पता एवरी फ्राइडे मिलदे तुसी, ये तुहाडी भाई साहब जी प्लैनिंग हैगी कि असीं किदा प्लैन कर लैणा, लंगर किदा छकाउणे तुहाडा मैटर आ, मैं तो यह दसना भी मर्यादा कहिंदी थले बह के लंगर खाणा किदा रिस्पैक्ट नाल लंगर छकाणा जे नहीं आ तुहाडी मैटर आ, है ना, इनक बेनती आ। यह मेरी मर्यादा सिखी मनवीर सिंह दी, कहिंदे मनवीर सिंह आई टॉपिक वार वार छेड़दा, होर तां कोई करदा नहीं, पर यह गुरु जे गुरु अर्जन देव जी की शहीदी असं मानते हैं कि गुरु अर्जन देव जी की शहीदी तो सिखी चेंज ना हो कि असी रिस्पैक्ट किया। ये साढ़े गुरद्वारा साहब ने, मैं कितने गया सी गुरद्वारा साहब, उन्होंने एक बैड आ सुखासन रूम, दे हैड लॉट्स ऑफ डिफरेंट पोथियां एंड गुरु ग्रंथ साहब जी, तो मैनु ज्ञानी जी कहें चिट्टी वार ने संस्कार करने देखो खरमिलक दम, मैं कुहा होर सिंह सी, असी जो बैड ते नहीं चैक कर लग पे तो एक आ लभ्या, इतने लिखिया की लिखिया संथा सेंचिया श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, सेंची पहली इस तरह ही आने पूरा गुरु ग्रंथ साहब पाठ आ, पद छेद पूरा पाठ जो श्रोमणी कमेटी वाला स्वरूप है पूरा पाठ है, बट इज रिटन संथा सेंचिया, संत सेंच जरा संथा मीन संथिया मीनस टू लर्निंग, ये सीखण वास्ते से पाठ सीखण वास्ते वर्ड सैपरेट की, ये भी असी उत्थों लिया स्वरूप, इतने नोट करो पूरा पाठ पूरा गुरु ग्रंथ साहब जी नोट करो, शेप भी नोट करो, इदा नहीं इदा आ शेप भी आ, एरे विच भी दूजे विच भी लिखिया संथा सेंचिया पन्ना 1430 पूरा पाठ आ, तो इदा अंदर ये लुक्स लाइक दिस, ये सीखने वास्ते लर्निंग टूल से, माड़ी गल नहीं सीखने वास्ते।